0: छक्का दे जब माली तानमले छखाई अंतर पूजा पड़े कदे बस जब तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरन दा महला पहला
1: मानस खाने करे ने वाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद यो ना पे आयो ईसा कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र

0: जे महा का कर्म है पितरी दे, अगे वस्त संजाणी है पितरी चोर करे। बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्फिये करे, नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
1: जो जोरू सरना वड़िया वे बारो बार, जूठे जूठा मुख वसे नितन तो होए खुआ। सुचे ए ना आखिए वैन जे पिंडा तोए, सुचे सही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी तुरे।

श्लोक कुहती जाई सटिया कैसे हो लगा दोख अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पनवा पाया ता हो पाक पापी सो तन गड़िया थुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम रस खाहे नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।

0: दूजा
1: एक नहीं चाकरी जित भाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडिए जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितो ज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिजै त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत बड़ भागी उन मान्याओ रिद शब्द बसायाओ मन मानक संतोखियाओ गुर नाम दृढ़ायाओ अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दरसायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनभउ ठहरायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनभउ ठहरायो सतगुर सच्चा पाति साहु कूड़े बाद साह दुनियावी सतगुर नाथा नाथ है होए नौ नाथ अनाथ निथावी सतगुर सच दातार है होर दाती फिर दे पाशावी सतगुर करता पुरख है कर करतूत निनावन नावी सतगुर सच्चा साहु है होर साहु वे साह उचावी सतगुर सच्चा वैद है होर वैद सब कैद कूड़ावी विण सतगुर साब ने गोसावी विण सतगुर साब ने गोसावी सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी
நூறு அரசாகு கூறசாகு சட்டிய தோது டிட்டி சச்சி பாத்து சா மால ஜனம ஜனமதி கட்டிய சஜ்ஜன சச்சா பாத்து சாஹு சிர சாஹாத சாஹு ஜிஸ் பாஸ் பஹட்டியா சூஹிய சாபனாதா வேசாஹு சஜ்ஜன சச்சா பாத்து சாஹு சிர சாஹாத சாஹு ஜிஸ் பாஸ் பஹட்டியா சூஹிய சாபனாதா வேசாஹு.

अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाय हर हर दुख नासी रहस उपजय मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा।

0: तुद तखत श्री शाह पादशाह ने चल चौरी शत
1: पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग लिख जा प्रकट बा जिया तो जियो सब जानला।

ईश्वर सिमरत सब किल विकनास है। गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल हो। गुर काटे

गोर दृष्टाया सबनी ठाई जल थल पूरहया गोसाई ऊंच ऊन सब एक समाना ऊंच ऊन।

साहिब जी की अरदास। बोल जो कब आप करनी सच्चे पातशाह जियो आपकी देह हजूर।

गोविंद दास तोहार सगल द्वार कौ छाड़ कर गहेओ तोहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇ

छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करहे मन मज्जन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काल्य ठाकुर हर दास तने गुर राम दास सर अपार परे राम दास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल हुए कर इस नाना गुरपूरै कीने दाना डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहया बद्दो पुरख विधाता ता तू सोहया वसदी सगने अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाय नाया रामदास सार हौ आया दूर हूं चल कै मैं तकी तौ सरनाए जियो मैं आसा रखी चित मह मेरा सबो दुख गवाए जियो एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास रखहु सरनाई अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपना तन मन हुए निहाल

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसिया। गुरु कै जन्म मरण दुख, ओ सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों। उदरिठे सचे पात सहा, माल जन मुर अरसों कुरसों। उदरिठे सचे पात।

सजन सचा पात साहु सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनांद वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पालत मुख उजल होई है नित त्याई हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी बड़ भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी बड़ भागी हर जपना जन नानक को गुरे मत दीनी

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्रकृतेः सर्व शब्दं एक शब्दं।

0: नव तन जग छायो, गुण गावे पायाल भगत नगाद प्रियंगम, महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे, ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन कुम सबसे सवारी, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो, जप काल सो जस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो। गुण गावे नमनाथ तन गुरु साज समायो, माता ता गुण रवे जैन चकर वे कहायो। गुण गावे बलराव सपत पताल बसंतो, पार्थर गुण उच्चर सदा गुर संग्रह तो, दूर बापरू रंगर गुरु नानक जस गायो। कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो, कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो।
1: पीत बसन कुंद दसन

0: वहो वहो का बड़ा तमाशा, आपे हंसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर पर गासा, आपे जल आपे थल थम्मण, आपे किया घट घट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मन है ब्रह्मा दिक रुद्रा दिक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइए परमारथ, सत संगत सेती मन खचना, किया खेल बड मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने, शिव बिरंच धर ध्यान नितह जिस बेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गड़न समथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार।

नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस है गुरु का।

मूल न बुझह आपना, से पशुआ से टोर जीय। नित नित खुशियां मान करे, नित नित मंगे सुख जीय। करता चित न आवई, फिर लग है दुख जीय। सुख दुख दाता मन वसै,

बोल जी वाहे गुरु, एक ओंकार। वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवी। प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया, जस डठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां, सोहां साहिब जादियां, चालियां मुकतियां, हठियां जापियां तापियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देग चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे जिन्ना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रियां, नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेत आवे चेत आवन का सदका, सर्व सुख होवे जहां जहां। खालसा जी साहेब तहां तहां रसिया रे आए, तो देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाहा दान, पुरुषा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुग। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां।

पहला नाम में श्री काय क्रांतिक आह जुग जुग पे उठाइए ज्ञान चेता सात जुरा संतो का धर्म गिरथवा हो त्रेते रथ जते का जुर गिरथवा द्वापर तपे का सत गिरथवा कल जुग

0: पहला सिमरुख सराय रात दीर गत मच ओए जे आवे आस्कर जाहे निरा से केत फल फिके फुल बक बके को नयावे पत मिटत निवी नानका गुण चंगे आईया तत सब तुने आपको परतने में नको तारा राजू तो लिए निवेश गौरा
1: अपराधी दुनाद वे जो हंत मृगा शीस निवाया क्या थी गे शीस निवाया क्या थी गे जार दे कसुद है जाए महला पहला पढ़ पुसक संध्या बादन सिल पूजस बगुल समाधन मुख चूड़ भी भुखन साधन त्रिपाल थिगाल मिचारं गल माला तिलक ललाटं दोए धोती